0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुर्कुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चेकमा
1: का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रणाली उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लंच भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्केल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सपेंस गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्रणाली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजान ओखलढुंगा
1: संपर्क नंबर 0375902222 9852888022 र 9842803000

0: नेपालमी सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड को मोटर सको तथा स्कूटर अब उपजुला को मिलन सूचना
1: जापानीज ऊर्जा प्रणाली उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
1: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
1: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
1: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
2: हाम्रा सेवाहरू
1: ओखलढुङ्गा र खोटाङ को डिजिटल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकी मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
1: एक्सचेंज गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
1: ओखलढुङ्गाको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाङ ओखलढुङ्गा
2: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852888002 र 9842803000

0: रेडियो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: इट्स 1 PM दिउँसोको 1 बजे
0: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलरल्याब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलू दुतकुन्डा नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु
2: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चेकमा का विशेषता
0: जापानीज ऊर्जा प्रणाली उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
0: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
0: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लन्च भइरहेको
0: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
2: हाम्रा सेवाहरू
0: ओखलढुंगा र खोटाङ को डिजिटल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
0: एक्सचेंज गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
0: ओखलढुंगाको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाङ ओखलढुंगा
2: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852880222 र 9842808300
3: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्न एफएम सुन्न एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ

स्टार कोलोनिया तथा सोलामाई अफसेट प्रिंटिंग प्रेस सोलोदूत कुंडी नगर पालिक पांच सलेरी सुन खुम्बू विगत देखि ग्राहक विश्वास जीती आयो न्यू स्टार कोलोनिया तथा सोलामाई अफसेट प्रिंटिंग प्रेस थप सेवा का साथ में सब संग

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sound check. Sony FM. Studio time.
2: 3 PM. News for 3 PM.
3: Time check को साथ में New Star Digital Color Lab तथा ज्वालामय Offset Press. सोनू दुत्तु नगर पालिका 5 सोलुकुम्बू.
4: Wherever you are, thank you.

नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड चार कलरिया तथा गोड़ामाई अफसेट प्रिंटिंग प्रेस पूर्वोदत कुंडू नगर पालिक पांच तलेरी स्कूल खुम्बू विगत देखि नई ग्राहक विश्वास जीती आयो न्यू स्टार कलरिया तथा गोड़ामाई अफसेट प्रिंटिंग प्रेस थप सेवा का साथ में सब सुंग हमारा सेवाहरू वही संबंधी संपूर्ण काम किताब कैलेंडर भूसर बिल मीटर पैड रजिस्टर विवाह कार्ड फ्लेक्स प्रिंट होर्डिंग बोर्ड फोटो जस्ट प्रिंट गाड़ी तथा बाइक को नंबर प्लेट सफाई कर साथ ही स्टेशनरी का सामान होलसेल मूल्य में पाइन बीपीआ कंपनी को एलईडी बल्ब पावर सकेट पैनल लाइट ट्यूबलाइट प्रीमियर कंपनी को सब खाल का तार पाइन सीजी कंपनी का संपूर्ण सामान कंपनी के मूल्य में बिक्री वितरण गरिदै आएको छ सीजी कंपनी को फ्रिज डिफ्रिज वाशिंग मशीन माइक्रोवन मुहाउने गीजर गैस चिलो भैक्यूम तथा किचन को संपूर्ण सामान उपलब्ध छ एलईडी टीवी कंप्यूटर लैपटप कलर प्रिंटर फोटोकपी मशीन झाल ढोका में लगने मोटो तथा पातलो रंगीन सीसा फोटो फ्रेम होलसेल मूल्य में बिक्री वितरण गरिन्छ हार्डवेयर का संपूर्ण सामान काटी कब्जा छेस्किनी पाल्छा वाल मिक्सर मनी सावर बेसिन धारा कमोट पेनसेट पीवीसी पाइप सीपी भूसी पाइप पाइन का साथ ही फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मेसिन कंपनी के मूल्य में पाइन अभी ये सब मरम्मत गैस वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग साथ ही बाइक को ठेकी कलर करमेरी बस पार्क में रहकर न्यू स्टार तथा ज्वालामय ऑटो वर्कशॉप गैस सिलिंडर गैस सुनो साथ ही सब खाल बाइक तथा स्कूटर मरमत कर पार्ट पुर्जा मोबिल हेलमेट रेनकोट होलसेल मूल्य में बिक्री कर नया तथा रिकंडीशन बाइक समेत अर्डर अनुसार उपलब्ध कराई संपर्क नंबर 0385203089 0385203060 मोबाइल नंबर 9860321426 9841950 न्यू स्टार कलरिया तथा ज्वालामय अफसेट प्रिंटिंग प्रेस सलिरी सुन

0: रेडियो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: टाइम
3: चेक को साथ में डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दूध को नगर पालिका 5 चोलू खुम्बू।

महसूस कर रहे हैं क्योंकि तपाईं ने कहा था कि तपाईं ने और मैं चोट पूर्ण भाग चुका इसलिए अभी कहीं स्वार्थी निश्चित रूप से हेड रहा तपाईं ने और मैं चोट पूर्ण

ser un escritor de sexo. Y esa ley ha tenido muy buenos. Ese es el charco, este es el vete, es muy bien, ¿qué pasó? Sabe el tipo que no lo veis. Uno, una, sabe que se fue, dejásele, tiene un bien, también. Yo sabía que no solo Cristo no tiene un bien, tiene un bien, tiene un bien, tiene un bien, tiene un bien, tiene un bien, tiene un bien, tiene un bien, एक अंतर्गती कोमल लगा वो बयान हो ये समझे हमने सके जीवन के लिए ये समझे समझे विचार कर संसार को समय पूरा रंग समय देखा चु जब समय को पाएंगे तो समय अन्ना अन्ना ये भी तो पैसा हो उग्र मेहनत सुबह छोड़ने ये स्लाइड सुपर बनोस तो समय लाए जितना पुराने परिशोध को मोड़ देंगे वो तपाईले प्रत्येक दिन यो प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर तपाई आज मसँग हुनुहुन्छ र मलाई मेरो जीवनमा तपाईँको उपस्थिति चमकाउने कुराहरू गर्नु र मनमा मदन गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो जीवनमा विशाल स्वरूप परिवर्तन गर्नु परमेश्वरको शक्ति

तेरा गाना साझ पर्दा घर छोड़ी गाँव घूम जानू बाघ भालु बैरा हाथी चिकन पसे पछि धन जन को क्षति हुन्छ चुपचाप बस।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्रमा होंडा का विशेषता
1: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
0: उत्कृष्ट माइलेज
1: राम्रो रिसेल मूल्य
0: टिकाऊ र भरपर्दो
1: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
0: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
1: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
0: हाम्रा सेवाहरू
1: ओखलढुंगा र खोटाङ को डिजिटल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
0: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
1: एक्सपेंस गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
0: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
1: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गोरुमारी भुजाङ ओखलढुंगा
0: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852288002222 र 9842803000
2: Thank you.

0: त्रिभुवन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालाय अफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु।